निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

यह गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार, दोनों मिल मिले छेड़े तार, बोलत है पर खाती रिंझ दाऊ गौड़ मल्हार।

ये है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह भाग्यश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निकदार।

0: वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, क्या जान लेवा तान है, वाह जियो।
1: मालूम होता है कि बादल गरजे,
0: वाह उस्ताद, क्या तहदानी है।
1: वाह उस्ताद, वाह, हमारे तानसेन तो आप हैं, जिनकी खांसी में भी आराम।

0: मिसाल उदाहरण हैं। इसमें वे समझा रहे हैं कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो सामने छोटी छोटी उपलब्धियां लुभाती नहीं हैं। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास। सीप समंदर के भीतर रहती हैं, उसे चारों ओर पानी हिलोरे मार रहा है, लेकिन वह उस पानी को नहीं पीती। वह निरंतर प्यास प्यास रटती रहती हैं। वह प्यासी हैं, पर समंदर के जल से अपनी प्यास नहीं बुझाती। समुंद ही तिनका बरी गिने, उस सीप के लिए वह विशाल समंदर एक तिनके के समान तुच्छ हैं। उसकी नज़र उस खारे पानी पर नहीं है। क्यों? स्वाति बूंद की आस, क्योंकि उसे इंतजार है स्वाति नक्षत्र की उस एक विशेष बूंद का। उसे पता है कि जब वह बूंद उसके भीतर गिरेगी तभी वह मोती बन पाएगी। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया के ये विषय विकार, ये सुख सुविधाएं उस खारे पानी की तरह हैं जो प्यास बुझाते नहीं बल्कि बढ़ा देते हैं। एक सच्चा साधक उस सीप की तरह होता है। वह संसार के बीच तो रहता है, पर संसार के शोर और लोभ को अपने भीतर नहीं उतरने देता। उसे तो बस उस परमात्मा रूपी स्वाति बूंद की तलाश होती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद से पूछिए, क्या हम हर उस चीज से अपनी प्यास बुझा रहे हैं जो हमारे सामने आती है? क्या हम भीड़ का हिस्सा बनकर वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? अक्सर हम छोटी छोटी कामयाबियों और रास्तों में मिलने वाले प्रलोभनों को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं। आज कोशिश कीजिए उस सीप जैसी एकाग्रता लाने की। समंदर में रहिए, पर अपनी प्यास को स्वाति बूंद अर्थात सत्य के लिए बचा कर रखिए। याद रखिए, साधारण पानी पीने से प्यास बुझ सकती हैं, पर मोती बनने के लिए इंतजार और संयम की जरूरत होती है। अपनी लगन को कच्चा मत होने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपले खानदेश आपली मानसं।

0: हरिओ
1: मोह दर्शन दीक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन गिरधर हरिओ मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ मुरली

निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

यह है गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े तार, बोलत है बरखाती रेंज में गाओ गौड़ मल्हार।

यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह भाग्यश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निपदार।

0: वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, क्या जान लेवा तान है, वाह जियो।
1: उस्ताद वाह, हमारे डांस फैन तो आप हैं, जिनकी खांसी में भी आना।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: ये क्या बदतमीजी है?
1: बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है?
0: कह दो ये सब झूठ है।
1: क्या झूठ है?
0: यही कि तुमने मुझसे बेवफाई की है।
1: हमसे वफा की उम्मीद? हम नहीं जानते वफा क्या है।
0: लैला,
1: मेरा नाम लीला है।
2: Any problems, darling?
1: No problem, darling.
2: No problems?
1: No.
2: Then come on, let's go and dance.
1: Let's dance.

0: आप बैठे रहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: आप चाय पियेंगे?
0: पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि मैं चाय पीऊंगा या चाटा खाऊंगा।
1: चाटा?
0: हाँ, समझ लीजिए कि शाम का वक्त है, बाहर सूरज ढल चुका है, आकाश पर शर्म की लाली छाई हुई है, हवा हजार घुंघरुओं की पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम छम छम छम। खुले दरीचों से, दरीचों का मतलब समझती है ना, खिड़कियां, खुली खिड़कियों से ताजा ताजा गुलाबों की महक आ रही।
1: गुलाब? गुलाब कहीं नहीं है।
0: अरे तो जो फूल है उन्हीं की महक आने दीजिए, लेकिन बीच में टोकिए मत, वो टोकने से मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ, तो समझ लीजिए कि खुली खिड़कियों से ताजा फूलों की महक आ रही है। कमरे में हम दोनों अकेले ही हैं, आप और मैं। अचानक किचकिचाकर मैंने आपको अपनी बाहों में जकड़ लिया।
1: हाँ?
0: हाँ, वही तो, सीने से लगा लिया। अब आप क्या करेंगी, मुझे जोर से चाटा लगाएंगी या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए बिना मुझसे ये कहेंगी, हाय ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ना मुझे, कोई देख लेगा।
1: ये कैसा सवाल है?
0: जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके जवाब के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि इसके बारे में मैं आपके मामा जी से मिलूं या चुपचाप घर चला जाऊं।
1: अगर मैंने ना चांटा मारा और ना ही कुछ कहा तो?
0: देखिए, ऐसा गजब मत कीजिए, या तो आप मुझे चाटा ही मार लीजिए और या फिर आप मुझे।
1: सोच लीजिए, अगर मैं सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई तो?
0: अरे बाप रे, इस जवाब के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठहरिए, मैं लाला जी को पूछ कर आता हूँ। अगर मैंने आपको सीने से लगा लिया और आपने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर, यानी तीर आयन निशाने पर लगा है। सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे मामा जी से मिलकर आता हूँ। और सुनो, तुम चाय वाय बनाओ मेरे लिए और खाने को भी कुछ बिस्किट कुछ भजिए, यू नो, जल्दी करो।
2: श्रोतेहो, तुमच्या प्रत्येक मूडसाठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत, दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी, ओनली ऑन रेडिओ 1 भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

आइए जानते हैं उस सीप की अनूठी कहानी। कबीर सीप समंद की, रटे पियास पियास, समुदही तिनका बरी गिने, स्वाति बूंद की आस।

यह दोहा अनन्य निष्ठा और सच्ची लगन का एक बेमिसाल उदाहरण है। इसमें वे समझा रहे हैं कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो सामने छोटी छोटी उपलब्धियां लुभाती नहीं हैं। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास। सीप समंदर के भीतर रहती हैं, उसे चारों ओर पानी हिलोरे मार रहा है, लेकिन वह उस पानी को नहीं पीती। वह निरंतर प्यास प्यास रटती रहती हैं। वह प्यासी हैं, पर समंदर के जल से अपनी प्यास नहीं बुझाती। समुंद ही तिनका बरी गिने, उस सीप के लिए वह विशाल समंदर एक तिनके के समान तुच्छ हैं। उसकी नज़र उस खारे पानी पर नहीं है। क्यों? स्वाति बूंद की आस, क्योंकि उसे इंतजार है स्वाति नक्षत्र की उस एक विशेष बूंद का। उसे पता है कि जब वह बूंद उसके भीतर गिरेगी तभी वह मोती बन पाएगी। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया के ये विषय विकार, ये सुख सुविधाएं उस खारे पानी की तरह हैं जो प्यास बुझाते नहीं बल्कि बढ़ा देते हैं। एक सच्चा साधक उस सीप की तरह होता है। वह संसार के बीच तो रहता है पर संसार के शोर और लोभ को अपने भीतर नहीं उतरने देता। उसे तो बस उस परमात्मा रूपी स्वाति बूंद की तलाश होती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों,

0: कामयाबियों और रास्तों में मिलने वाले प्रलोभनों को ही अपनी मंजिल मान लेते हैं। आज कोशिश कीजिए उस सीप जैसी एकाग्रता लाने की। समंदर में रहिए, पर अपनी प्यास को स्वाति बूंद अर्थात सत्य के लिए बचा कर रखिए। याद रखिए, साधारण पानी पीने से प्यास बुझ सकती हैं, पर मोती बनने के लिए इंतजार और संयम की जरूरत होती है। अपनी लगन को कच्चा मत होने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपलं खानदेश, आपली माणसं।

0: मैं कहूंगा
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो
0: मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम
1: वह दर्शन भिक्षा दे दो
0: हरि मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम हरि मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम हरि मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम हरि मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम हरि मनोहर

निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह है ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्कान कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

यह गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े तार। बोलत है बरखाती रिन गाओ गौड़ मल्हार।

यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह बागेश्वरी विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निकदार।

0: वाह उस्ताद वाह उस्ताद क्या जान लेवा तान है वाह जियो
1: मालूम होता है कि बादल
0: वाह उस्ताद क्या तहदानी है
1: वाह उस्ताद वाह हमारे डांस फैन तो आप हैं जिनकी खांसी में भी आलाम
0: कांता दादा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: ये क्या बदतमीजी है?
1: बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है?
0: कह दो ये सब झूठ है।
1: क्या झूठ है?
0: यही कि तुमने मुझसे बेवफाई की है।
1: हमसे वफा की उम्मीद? हम नहीं जानते वफा क्या है।
0: लैला,
1: मेरा नाम लीला है।
2: Any problems, darling?
1: No problem, darling.
2: No problems?
1: No.
2: Then come on, let's go and dance.
1: Let's dance.

0: आप बैठे रहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा।
1: आप चाय पियेंगे?
0: पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि मैं चाय पीऊंगा या चाटा खाऊंगा।
1: चाटा?
0: हाँ, समझ लीजिए कि शाम का वक्त है, बाहर सूरज ढल चुका है, आकाश पर शर्म की लाली छाई हुई है, हवा हजार घुंघरुओं की पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम छम छम छम। खुले दरीचों से, दरीचों का मतलब समझती है ना, खिड़कियां, खुली खिड़कियों से ताजा ताजा गुलाबों की महक आ रही।
1: गुलाब? गुलाब कहीं नहीं है।
0: अरे तो जो फूल है उन्हीं की महक आने दीजिए, लेकिन बीच में टोकिए मत, वो टोकने से मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ, तो समझ लीजिए कि खुली खिड़कियों से ताजा फूलों की महक आ रही है। कमरे में हम दोनों अकेले ही हैं, आप और मैं। अचानक किचकिचाकर मैंने आपको अपनी बाहों में जकड़ लिया।
1: हाँ?
0: हाँ, वही तो, सीने से लगा लिया। अब आप क्या करेंगी, मुझे जोर से चाटा लगाएंगी या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए बिना मुझसे ये कहेंगी, हाय ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ना मुझे, कोई देख लेगा।
1: ये कैसा सवाल है?
0: जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके जवाब के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि इसके बारे में मैं आपके मामा जी से मिलूं या चुपचाप घर चला जाऊं।
1: अगर मैंने ना चांटा मारा और ना ही कुछ कहा तो?
0: देखिए, ऐसा गजब मत कीजिए, या तो आप मुझे चाटा ही मार लीजिए और या फिर आप मुझे।
1: सोच लीजिए, अगर मैं सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई तो?
0: अरे बाप रे, इस जवाब के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठहरिए, मैं लाला जी को पूछ कर आता हूँ। अगर मैंने आपको सीने से लगा लिया और आपने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर, चलिए तीर आए निशाने पर लगा है। सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे मामा जी से मिलकर आता हूँ। और सुनो, तुम चाय वाय बनाओ मेरे लिए, और खाने को भी कुछ बिस्किट कुछ भजिए, यू नो, जल्दी करो।
2: श्रोते हो, तुमच्या प्रत्येक मूड साठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत, दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी, ओनली ऑन रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
3: हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमातलं हे गीत आहे आशा भोसले यांनी गायलेलं, कवी योगेश यांचं। ऐकूया किसी से ना कहना या चित्रपटामधलं हे गीत, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों